तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: LemFi means quicker and safe way to send money.
3: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
2: LemFi means £10 sign up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKEA.
3: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
4: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
5: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
6: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio. Circle.

0: the energy and those proper live stage vibes.
1: Hosted by the team of Lyco Radio Network, Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
0: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council,
1: Arts Council England.
2: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
3: दिल तो टूट पे किया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394.
5: Raj Badden drives Leicester home with Drive at 4 p.m. Oh,

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए अख

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बोला खोए लख होवें लखवीस लख।

तिस्वी जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
2: Nazar se nazar.
1: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a three-course meal. The exclusive radio partner, Lyca Radio Network.
3: क्या आप नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं, जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है £39,500, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
5: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
4: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
6: इफ यू सी समबडी शोइंग एनी ऑफ द साइंस ऑफ अ स्ट्रोक, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, यू जस्ट डायल 999, यूज द फास्ट टेस्ट। एफ, फेस, has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms, can they raise both arms and keep them there? S, speech, is their speech slurred? T, time, time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
7: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads, where you don't know what's around the corner. Think, don't let your speed creep.
8: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit heartyhanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit heartyhanks.com today.
9: On this week's Lyca Extra podcast, Lyca Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
10: You have to be really dedicated to be able to
11: become a
10: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
11: True.
10: Mm-hmm. Whether it's at home or whether it's family.
9: Lyca Extra is here. Search for our podcast, Lyca Extra, on all major streaming platforms. Back-to-back hits across the Lyca Radio Network.

0: This is Leica Radio.
1: Mum, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
2: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
1: So where do we find something like that now?
2: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest use it.
3: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Sidhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल Protected.
5: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara.
6: Nazar se nazar.
5: Performing live in Birmingham on Friday, 31st July at Albury, Birmingham. Book your tickets now on eventbrite.com. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets just £25, including a 3-course meal. The exclusive radio partner. Leica Radio.

good morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो नेटवर्क पर पुराने गीतों का खजाना। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं ये कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब की ओर से पहले धन्यवाद कहूँ काजल को। शी विल बी बैक टुमारो मॉर्निंग।

0: डायरी खुल गई है और कुछ लाइनें भाई आपको समर्पित करना चाहता हूं प्रोग्राम को शुरू करते हुए। और वो लाइनें जो पहले भी आप सुन चुके होंगे, फिर एक दरखास्त, एक रिक्वेस्ट कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। धरा यानी धरती, पूरी दुनिया भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Refreshing Asian hits across the Leica Radio network.
0: पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है।

0: I love you.
1: हो गया लव यू हो गया भाई। ये आदान प्रदान उस उम्र में बहुत होता है, बाद में जाकर के लोग इसकी परिभाषा ही बदल लेते हैं। राइट, शुरुआत होती है बैक टू बैक संगीत से और दो गीत हमने परोसे, आपको पसंद आए होंगे। पहला गीत, तुम अगर साथ देने का वादा करो, रवीश जी की बनाई धुन पर आवाज महेंद्र कपूर की थी एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द 1967 फिल्म हमराज। और भाई उसके बाद हमराज और भी बनी फिल्में, तो एक टाइटल से कई कई बन जाती हैं। दूसरा गीत जो आपने सुना ये हमने फिल्म अकलमंद से लिया था, अकलमंद, और ये गा रहे थे किशोर कुमार और एस जानकी। अब भाई पहले हम पाउंड रेट बताते हैं और याद दिलाते हैं आपको कि 10:30 बजे आप सुनेंगे आज के प्रमुख समाचार। राइट नाउ लेट्स फाइंड आउट द पाउंड्स वैल्यू इन इंडियन रुपीस।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: State Bank of India UK. याद दिला रहे हैं आपको भाई, रेट अच्छा चल रहा है। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं भारत में तो नोट कीजिए, टुडे दे आर गिविंग 128.6 इंडियन रुपीस फॉर वन पाउंड, 128.60 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके की किसी भी ब्रांच में जाकर के वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन यू कैन ट्रांसफर और यू कैन ट्रांसफर वाया यूजिंग द योनो SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Leica Radio.
3: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10 kg, $7.49. Leela Medium Atta 10 kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20 kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2 kg, $10.99. And Falcon Paneer Box, $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg, $8.99. Karela or Long Dudi, $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash & Carry, 82A Syston Street West, Lister, LE1 2JU, and 2A Rollout Hill, Lister, LE5 4UN.
4: Lester Miller is back
5: and the stage is about to explode. Confirmed artist
4: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration at the Abbey Park.
5: Hosted by the team of Leica Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
4: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
5: Arts Council England.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।

0: स्वर्गीय मुकेश जी का दर्द भरा स्वर और भाई गीत की शब्दावली भी ऐसी है।
1: जुबान पे दर्द।
0: आज बृहस्पतिवार है, हमारे श्रोताओं की ये इच्छा रहती है कि कुछ एक दर्द भरे गीत आज के प्रोग्राम की शोभा बने। बाहर आने से पहले खिजां चली आई।

0: मर्यादा फिल्म से लिया था हमने ये गीत, और भाई इस गीत को सुनवाने के बाद याद दिलाते हैं आपको, हमसे थोड़ी देर बाद आज के प्रमुख समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक हिस्टोरिकल न्यूक्लियर समझौते की खबर आ रही है। समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते से खाड़ी का ये देश अपना नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डेवलप करेगा। अमेरिकी ऊर्जा डिपार्टमेंट के अनुसार ये शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सहयोग समझौता है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर काम करने का मौका मिलेगा। समझौते का पूरा ब्यौरा अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में इसके तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिल सकती है। भारत में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। भाई पेपर लीक का मामला जो है वो इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसी में से ये खबर आ रही है। कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य स्पोक्सपर्सन सौरभ दास ने कहा है कि मैंने आज सोनम वांगचुक से कई बार बात की, उन्होंने सभी प्रदर्शन करने वालों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और इस प्रदर्शन को सही तरीके से करें। इस देश में पहले हुए प्रदर्शनों में सत्ताधारी दल की ओर से कुछ असामाजिक तत्वों की घुसपैठ कराएगी और फिर दोष आंदोलन पर मढ़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक कुछ मेट्रो स्टेशन वहां बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरी स्टेशन पर इंटरचेंज लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पेपर लीक मामले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के इल्जामों का जवाब दिया है। जेपी नड्डा, आपने जम्मू कश्मीर में एसएसबी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का जिक्र करके सही मुद्दा उठाया है, लेकिन उसकी तारीख गलत बता दी है। ये मामला 2022 का था। भाई पेपर लीक ये जो बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जो परीक्षाएं होती हैं तो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके उसमें हिस्सा लेते हैं, और जब पेपर लीक के कारण अगर एग्जामिनेशन कैंसिल किया जाता है तो उनकी मेहनत, उनका समय वो बेकार होता है। उसी को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी कांग्रेस जनता पार्टी की हिमायत में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का आंदोलन है, न्याय और जवाबदेही की मांग के लिए हम सभी को एकजुट होकर इसका साथ देना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विश्वास दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले अपराधियों के खिलाफ डेफिनेटली सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन साहब कुछ लोग अब प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने खासकर अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतर आई है, लेकिन उनके इस्तीफे से कम किसी प्रोटेस्टर को कोई समझौता स्वीकार नहीं करना चाहिए। मशहूर एक्टर कमल हासन ने भी जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी और उसके हिमायतों की भावुक अपील की है। और भी बहुत लोग समर्थन में आ रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी के आंदोलन पर भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर बल्लेबाज शिखर धवन भी अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे नौजवान हमारे देश का भविष्य हैं, उनके सपनों और उनकी आकांक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन मुश्किल वक्त में धैर्य बनाए रखना और देश की संस्थाओं और सरकार पर भी भरोसा रखना उतना ही अहम है। यानी शिखर धवन दोनों तरफ संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर रिएक्ट किया है। युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ये संकल्प भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ तुरंत सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इस बात का प्रतिबिंब है।

अनूप जलोटा की आवाज से शुरू होता है ये गीत, लता जी पूरा करती हैं। प्यार को सलाम, इस उद्गार को सलाम, इस उम्र को सलाम, इस जज्बे को सलाम।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: और मेरे भाइयों, अभी खबरों में एक खबर जो छूट गई थी लेकिन अभी वो पूरी नहीं आई है. मोहम्मद बशीर, लेटेस्ट कमिटेड जिहादिस्ट जिसने डिफेंस बेस पर अटैक करने की प्लानिंग की थी, उसको सजा सुनाई जा रही है. आज अभी कोर्ट की कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है. जैसे ही निर्णय या फैसला आएगा, नतीजा आएगा, वो भी हम अपनी ब्रॉडकास्ट में शामिल करेंगे या मुख्य खबरों में जो हर घंटे अंग्रेजी के समाचार आते हैं उनमें उसकी खबर आने की संभावना है.
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: Southall Travel, आप जानते हैं भाई, वो याद दिला रहे हैं आपको कि दुबई यात्रा पर लेकर के जो बातें चल रही थी अब वो हटा दी गई, यानी अब आप दुबई का सफर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वहाँ विजिट. साउथॉल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई. कॉल साउथॉल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेटिटिव दुबई डील्स. उनका फोन नंबर है 02085748410. And they are at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: Ye hai Leica Radio.
4: Leica Radio.
5: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
6: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Desi twist.
7: Be sure to catch the show across the Midlands. The Belgrade Theatre Coventry, Thursday the 16th to Sunday the 19th of July. And at the Crescent Theatre Birmingham, Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October.
6: Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight.

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा, आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर लाइका गोल्ड का मनोरंजन प्रोग्राम है। ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, वक्त हो रहा है चिंतन का। पर चिंतन से पहले भाई, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के संदेश आ रहे हैं और वह हैं सब आप सब की बदौलत। वेल भाई, अभी अभी भारत से खबर आई है कि मुझे वहाँ एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सृजन और सेवाओं के लिए, हिंदी की सेवाओं के लिए, हिंदी भाषा की विदेशों में भाई सेवाओं के लिए विशेष हिंदी सेवी सम्मान। ये एक अवार्ड है जिसमें 1,00,000 रुपए की राशि और एक शील्ड जो है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ से स्टेज पर जाकर एक्सेप्ट की है। भाई सम्मान हिंदी भाषा का है, सम्मान साहित्य का है और सम्मान सुनने वालों का है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू चौधरी साहब, मीना जी, गीता जी और नीलम जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक ये समाचार पहुंच गया है और आपके बधाई संदेश आ रहे हैं। आइए आज के चिंतन की ओर रुख करें। आज के चिंतन के लिए ब्लैकपूल से अतुल जैन ने भिजवाया है आलेख और याद दिलाया है, शर्मा जी जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कहते मेरी जिंदगी में भी कुछ क्षण ऐसे आए थे। हर व्यक्ति जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो कभी कभी भाई उसके जहां बहुत सारे समर्थक होते हैं तो 2-4 ऐसे लोग भी होते हैं जो टांग खींचने का काम करते हैं, नीचे गिराने का काम करते हैं विभिन्न माध्यमों से। ऐसे ही एक आदमी का भरा पूरा फलता फूलता कारोबार तबाह हो गया। उसे लगा कि अब वो फिर से नहीं उठ पाएगा। निराशा की घड़ी में जब व्यक्ति को आसपास इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आता है, ऐसे में एक नेगेटिविटी का जाल सा बुनता चला जाता है। व्यक्ति सोचता है मेरा तो जीना ही बेकार है, कैसे मैं एक कर्जदार के रूप में लोगों की निगाहों का सामना करूंगा, गली से गुजरना मुश्किल हो जाएगा, सड़कों पर बाजारों में कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगा। और ऐसे में व्यक्ति आत्महत्या की सोचता है, पर कैसे करे? आत्महत्या भाई बहुत बड़ा पाप होता है, सब जानते हैं, लेकिन उसके सिवा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तभी उसे विचार आया कि उसके गुरु ने उसे एक बार एक लिफाफा दिया था और यह कहा था कि इसको तभी खोलना जब दुनिया में तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, जीने की कोई सूरत ना दिखे, जब तुम निराशा के घनघोर बादलों में अपने आप को भटकता हुआ पाओ तो ये लिफाफा खोलना, इसमें तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। उसने सोचा इससे ज्यादा उपयुक्त समय कोई और हो नहीं सकता, मुझे जिंदा रहने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही दुनिया से चला गया तो ये कागज ये लिफाफा बंद का बंद रह जाएगा। मुझे देख लेना चाहिए कि ऐसा क्या लिख कर दिया था महात्मा जी ने और कहा था कि इसको घोर निराशा के पलों में क्षणों में खोलना और पढ़ना। उसने आत्महत्या से पहले घर जाकर वो लिफाफा ढूंढा, खोला तो उसमें लिखा था ये वक्त भी नहीं रहेगा। जब अच्छा वक्त गुजर गया, जब वो सुहाने दिन नहीं रहे, तो ये निराशाजनक पल भी खत्म हो जाएंगे। बड़ी अच्छी तरह से समझा कर लिखा गया था। कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा। याद रखिए बहनों भाइयों, कितने भी निराशा के क्षण आपकी जिंदगी में आए, कोई ऐसी रात नहीं है जिसका होता नहीं सवेरा, कांटों के ऊपर चलने वाले फूलों पर भी हक है तेरा। ये वक्त भी गुजर जाएगा, थोड़ा इंतजार करो, देखना बहारें फिर भी आएंगी।

रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, भरोसा रखिए। वह उस व्यक्ति ने यह नोट पढ़ा और इरादा बदल लिया। जिंदगी में बदलाव आया, बदलाव आता है।

0: थॉट फॉर द डे, आज का विचार जिसके लिए आलेख ब्लैकपूल से अतुल जैन ने भिजवाया था। धन्यवाद अतुल जी। जो गीत हमने सुनवाया दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म सोने की चिड़िया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें शामिल थी इस गीत में। और बहनों भाई, इसके साथ ही बधाई संदेशों का जो भाई क्या कहते हैं दौर शुरू हो गया है, मैं एक बार फिर से बता दूं किस लिए बधाइयां मिल रही हैं। मुझे सूचना तो मिल गई थी लेकिन मैं जल्दी में यात्रा नहीं कर सकता था। आज 23 जुलाई को हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति की अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुझे विशेष हिंदी सेवी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा अपने हाथों से उन्होंने इनाम दिया, वो ये सम्मान दिया जिसे मेरे छोटे भाई और हरविंदर मलिक ने मेरी गैरहाजिरी में स्वीकार किया। इसके लिए मैं रवि शर्मा लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन से लाइव प्रसारण में माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री सैनी साहब का, हरविंदर मलिक का और एक और हमारे मित्र दिनेश शर्मा जी का और वही हरियाणा साहित्य अकादमी का भी बहुत बहुत आभार। आइए अब चिंतन को समेटते हैं और अपने मूल रंग मनोरंजन की ओर लौटते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK याद दिला रहे हैं भाई, सही मौका है पैसे भिजवाने का। भारत पैसे भिजवाना चाहें तो रेट नोट कर लीजिए। फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 129.11 इंडियन रुपीस, पाकिस्तानी 371.04, श्रीलंकन 449.26। क्षमा कीजिए, मैं सिर्फ भारतीय पैसे का रेट बताना चाहता हूँ। इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके वाले दे रहे हैं 128.60 फॉर वन पाउंड, और यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। ध्यान रहे, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Leica Radio.
3: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार Bollywood night के लिए. Jay's Entertainment presents Bollywood Legend live in concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor. Playback singer Aman Trika. Or female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets book kare demontforthall.co.uk
4: ya Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

आशा भोसले और अमित कुमार को सुनिए, और साथ साथ भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, सेंड इन भजन, नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस 07424232323 पर।

0: फिर याद दिला दो भाई, कंपटीशन शुरू हो चुका है और आप अपनी एंट्री करा सकते हैं 07424-2323 पर। आपको सिर्फ भजन लिखकर भेजना है, भजन जैमिंग के कार्यक्रम के दो टिकट्स जो नॉर्थ होल्ट में हो रहा है, तो वहाँ के दो टिकट्स आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी भेजना है, भूलिएगा नहीं। और जैसे ही मिलेगा आपकी एंट्री हो जाएगी और नतीजा भी जल्दी ही निकलने वाला है। इसी बीच एक और संदेश के लायका, रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर फॉर दिवाली स्टोरी द म्यूजिकल दैट सोल्ड आउट द रॉयल अल्बर्ट हॉल एंड नाउ अराइव्स एट ओवो वेम्बली अरीना ऑन संडे 27 सितंबर। A student pre-show takes place between 5 and 5:45 p.m. लेकिन जो मेन इवेंट है वो 6:15 बजे शुरू होगा, रात 9:30 बजे तक। शानदार प्रदर्शन क्रिएटेड बाय सनातन इवेंट्स फाउंडर नितिन पालन MBE एंड फीचरिंग कोरियोग्राफी फ्रॉम द बॉलीवुड डांस स्कूल। और इसके अलावा भाई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोडक्शन ब्रिंग्स द रामायण टू लाइफ विद अवर चैप्टर्स, a bespoke 7-song soundtrack and a full international cast. Tickets ke liye www.diwalistory.com वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो भूलिएगा नहीं, ये शानदार कार्यक्रम जो है हो रहा है 27 सितंबर को वेम्बली अरीना में, वेम्बली अरीना। तो साहब ये सूचनाएं साथ साथ बताते चलेंगे और कंपटीशन में आपकी एंट्रीज को संभालते चलेंगे, विनर का नाम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे।
1: ये है Like Her Radio Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: listen to the freshest hits added daily on Lyca Radio.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: कल महान गायक कलाकार मुकेश जी की जयंती थी। दिन भर भाई उनकी चर्चा हुई, उनकी आवाज, उनका मधुर कंठ जो है गूंजता रहा कार्यक्रमों में। ये गीत उनकी आवाज में गंभीर नहीं है, चुलबुला है, थोड़ा चटपटा।

0: सूरत आपकी।
1: भाई हमारे श्रोता याद दिला रहे हैं कि आज बृहस्पतिवार है शर्मा जी, ये झूमने गाने गिरने पड़ने बिना पिए ही डगमगाने वाले ये गीत तो आप बाकी दिनों में भी सुनवाते हैं, आज तो हमें दर्द भरे गीतों का इंतजार है और उन आंखों की अभिव्यक्ति जो बिछी रहती है किसी प्रियतम के आगमन में। भाई उन यादों का जिक्र, उन आहों का जिक्र, आंसुओं की कहानी, वो नैनों से बरसता खारा पानी, वो सुनवाइए ना। ठीक है भाई, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। एंजॉय कीजिए, खबरों के उस पर हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।

प्रोग्राम के अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन प्रोग्राम ऑन लाइका गोल्ड लाइका रेडियो नेटवर्क पर। ये मनोरंजन का तीसरा और अंतिम घंटा। माय नेम इज रवि शर्मा। आई विश यू अ ब्रिलियंट आफ्टरनून टुडे।

बैक टू बैक संगीत में एक गीत श्रद्धांजलि स्वरूप शिव बटालवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज भाई उनकी जयंती है, बड़ा पिंड 1936 ही वाज बोर्न। गंभीर स्वर जगजीत सिंह जी का।

0: मैनू तेरा शबाब ले बैठा। भैये शिव बटालवी की रचना थी और जगजीत सिंह जी का स्वर था। इससे बढ़िया संयोग हो नहीं सकता, लेकिन दर्द की अभिव्यक्ति, भाई शिव बटालवी तो दर्द के कवि हैं। और आपको बता दें कि उनकी डेथ 1973 में हो गई थी, मगर उनके गीत लिखे हुए, उनकी रचनाएं जिंदा हैं। शिव बटालवी को श्रद्धांजलि स्वरूप, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। 1936 में बड़ा पिंड जगह का नाम है जहां उनका जन्म हुआ था। और भाई पंजाब में ये कवि आज भी बहुत लोकप्रिय हैं, पर के पूरे भारत में पंजाबी समझने वाले इनका सम्मान करते हैं। आज जन्मदिन मनाने वालों में कुछ और नाम भी शामिल हैं, सिर्फ फिल्मी दुनिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में जिनका भाई क्या कहें कि सम्मान है। और बड़े गर्व से भारत में चंद्रशेखर आजाद अगर आज दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। भाई स्वतंत्रता सेनानी, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने शहादत स्वीकार की। चंद्रशेखर तिवारी थे, लेकिन आजाद उन्होंने अपना उपनाम रखा क्योंकि वो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे, ये उनका कहना था। ১৯০৬ में जन्मे थे चंद्रशेखर आजाद। आज ही के दिन जन्मे थे संगीतकार हिमेश रेशमिया 1973 में। और साहब एक और स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय नेता बाल गंगाधर तिलक 1856 में जन्मे थे, आज ही के दिन 23 जुलाई को। तो भाई आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं स्वीकार कीजिएगा। और साहब याद दिला दूं कि वो कंपटीशन चल रहा है, भजन जैमिंग जो हो रही है उसके लिए अब कंपटीशन में 2 टिकट्स दिए जाएंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ भजन लिखिए और उसके बाद आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस जरूर होना चाहिए। नंबर है 07424232323, जहां आपको ये इन्फॉर्मेशन भेजनी है। भजन ये लिखना है, फिर आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। और बहनों भाइयों जहां भेजना है वो हमारे स्टूडियो का कंपटीशन नंबर है 07424232323। ऑल द बेस्ट।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके फिर दोहरा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि पैसे भारत भेजना चाहें तो भाई मौके का फायदा उठाइए, अच्छा रेट है, सही समय है। टुडे दे आर गिविंग फॉर £1 दे आर गिविंग 128.6 रुपीज, 128 रुपए और 60 पैसे एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: List up, stock up and save at Falcon Cash & Carry. Falcon Chakki Atta 10kg, $7.49. Leela Medium Atta 10kg, just $3.99. Disha Extra Long Basmati Rice 20kg, $24.99. Hira Butter Ghee 2kg, $10.99 and Falcon Paneer Box $8.99. Get Falcon Kesar Mango Pulp for $1.49. Tata Salt for 69p. Kisan Hot and Spicy Sauce for 99p. And 2 Falcon Red Lentils 1.5 kg for $3.99. Mido Yogurt 10 kg $8.99. Karela or Long Dudi $2.99 per kilo. Offers valid from 6th July to 2nd August at Falcon Cash and Carry, 82A Syston Street West, Leicester, LE1 2JU and 2A Rollout Sale, Leicester, LE5 4UN.
3: Start

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
5: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
6: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
5: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
7: Lester Mela is back
8: and the stage is about to explode. Confirmed artist
7: Lember Hussain Puri. Get ready for full Punjabi energy, Bhangra beats and live Mela vibes.
8: Hosted by the team of Laika Radio Network. Saturday 15th and Sunday 16th August at Abbey Park, Leicester.
7: An event by 101 Circle in association with Leicester City Council.
8: Arts Council England.
9: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
10: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
11: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
12: Artist of the Week. इस सप्ताह की कलाकार हैं अदाकारा हेमा मालिनी. हेमा जी ने भाई अपने अभिनय की दक्षता जो है साबित की है कई तरह के रोल करके. कहीं चुलबुली चटपटी सी वही भाषा बोलने वाली, कहीं शोले में अलग लड़की और कहीं बहुत गंभीर. जॉनी मेरा नाम में वो दुल्हन एक बड़ी मजबूर सी लड़की है. मुंबई में पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया कि धर्म जी की आपसे जो आखिरी बात थी, उन्होंने आखिरी शब्द क्या थे आपके लिए उनके, तो हेमा जी ने कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा था परिवार को जोड़े रखना. सनी और बॉबी, हेमा जी कहती है बहुत अच्छे लड़के हैं, मेरा सारा परिवार एकजुट है धर्म जी की खुशी के लिए. भाई धर्म जी के साथ, वैसे मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 में हुआ था और धर्म जी के साथ 2 मई 1980 को उनका विवाह हुआ. और साहब उसके बाद कितनी फिल्में उनकी, पहले भी साथ साथ आ चुकी थी और उनकी जोड़ी बड़ी कामयाब जोड़ी फिल्मी दुनिया में मानी जाती है। लेकिन अब आएगी जरूर चिट्ठी मेरे नाम की, धर्म जी की ओर से। ये विश्वास उनका आज भी बना हुआ है कि धर्म यानी धर्मेंद्र जी दुनिया से चले गए हैं मगर उनके दिल से नहीं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक हेमा मालिनी।

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: और बहनों भाइयों, हेमा हमारे लिए सप्ताह की आर्टिस्ट हैं। उनके गीत तो आप सप्ताह भर सुनेंगे, अभी वीकेंड तक तो कई गीत आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन एक गीत सुनवाते हैं आपको जो याद दिलाएगा महमूद साहब की।

0: सज रहे। अरे हाँ,
1: महान हास्य अभिनेता यानी कॉमेडियन महमूद अली की आज पुण्यतिथि है। 23 जुलाई 2004 में उनकी डेथ हुई थी। शौकत हुसैन साहब याद दिला रहे हैं। शौकत भाई बहुत बहुत शुक्रिया।

0: सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाख दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम ना आया, सड़कों पर बेचा।

ये महमूद की आवाज है, महमूद गाते भी थे। मोहम्मद रफी और महमूद साहब की आवाजों में ये गीत फिल्म कुआरा बाप से लिया गया था। भाई आज महमूद साहब की पुण्यतिथि है।

0: पुनेश्वर श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए भाई और शौकत भाई का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। याद दिलाते हैं आपको कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ द स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी टेकिंग प्लेस एट द ओवो अरीना वेम्बली ऑन सेप्टेम्बर संडे 27 सेप्टेम्बर संडे। Visit AXS or Wembley for tickets.
1: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: अभी तक अगर आपने भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं फिर याद दिला दूं आपको कि भजन जैमिंग के दो टिकट्स हम दे रहे हैं। भजन जैमिंग्स के कार्यक्रम में जाने के लिए आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो सिर्फ इतना करना है कि भजन लिख करके हमारे जो कंपटीशन लाइन का नंबर है उस पर भेजिए। भजन लिखिएगा फिर अपना नाम लिखिएगा। भजन BHAJAN भजन या डबल जे कर सकते हैं, भजन हो जाएगा नहीं, भजन लिखिएगा जैसे भी, लेकिन अपना नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा क्योंकि टिकट्स आपको ईमेल के माध्यम से भिजवाए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, नतीजा निकलने वाला है।

0: क्या कर रहा हूँ?
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना।

0: जीने मरने का मौसम आया भाई, अनाउंस करने का मौसम आया कि कौन है विनर। मैं पहले आपको बता दें कि किस चीज की टिकट सर लाए का रेडियो नेटवर्क टीम अप विद SKLPC UK Northolt फॉर बैकस्टेज शिवलिंग्स द पाइनियर्स ऑफ भजन जैमिंग दे आर कमिंग एंड अराइव फ्रॉम इंडिया फॉर देयर फर्स्ट एवर UK परफॉर्मेंस। It takes place on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC. लेकिन आपको बता दें जो टिकट हम दे रहे हैं, मैं दे रहा हूं जो आज के इस प्रोग्राम में, वो 9 अक्टूबर के हैं। आपको ईमेल के माध्यम से मिलेंगे। आप बहुत सारे लोगों ने भजन लिख के भेजा, कंपटीशन की शर्त ये थी कि आप भजन लिखिएगा। भजन नहीं बनाना, भजन लिखना है BHAJAN। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो विनर हैं जो जाएंगे 9 तारीख के कार्यक्रम में भजन जैमिंग का आनंद लेने के लिए, द विनर इज फॉर द 2 टिकेट्स, इट्स बीमा श्रेष्ठा। बीमा श्रेष्ठा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। यू आर द विनर, 2 टिकट्स आर ऑन द वे फॉर यू टू एंजॉय द भजन जैमिंग ऑन 9th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC Northolt।
1: ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। मनोरंजन विद रवि शर्मा। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और आपको मैं रेट्स बता दूं भाई, फॉर £1 एट दिस मोमेंट दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.01 रुपीज, पाकिस्तानी 370.97, श्रीलंकन रुपए 448.59, बांग्लादेशी टकाज 164.86 एंड अफगान अफगानी 88.02।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
0: And the gold is... trading at the rate of 98.41 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: Leicester, तैयार हो जाओ एक यादगार बॉलीवुड नाइट के लिए। Jay's Entertainment presents Bollywood Legend Live in Concert featuring Bollywood actor Sanjay Kapoor, playback singer Aman Trika और female singer Mayuri Patalia. Sunday, 27th of September, De Montfort Hall, Leicester. Doors open 6:30 PM, show starts 7 PM. Tickets, book kare demontforthall.co.uk
3: या Mumbai Sandwich Station on 0116-332-0262 or call Mr. B on 07860-280-655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Are you a nurse, physiotherapist, occupational therapist or paramedic? Would you like to work office hours, enjoying every weekend off and no night shifts? At Capita, we are seeking hybrid clinical assessors based at various locations across the Midlands, with remote working possible for those who live outside the area. We offer a starting salary of £39,500, comprehensive training and ongoing CPD, plus a host of other benefits. Interested? Search Capita Health Assessment Jobs today.
6: Location, location, location. location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-373-6333 now. That's 020-373-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
4: मनोरंजन विद रवि शर्मा.
5: और बहनों भाइयों, अब कार्यक्रम को समेटने का समय हो गया है, लेकिन स्टूडियो छोड़ने से पहले एक बार फिर दोहरा दो भाई धन्यवाद के शब्द, क्योंकि भारत में शुभचिंतक सुन रहे हैं. आपको याद दिलाऊं कि आज सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद जी की जयंती के पावन अवसर पर दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रोहतक और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति के अकादमी द्वारा आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में मुझे विशेष हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया है. और ये किया गया है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों से. और इस अवार्ड को मेरे अनुज हरविंदर मलिक ने मेरी अनुपस्थिति में स्वीकार किया है. उसके लिए मैं रवि शर्मा यहां लंदन से लाइव रेडियो पर लाइका गोल्ड रेडियो लंदन से माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का भी और हरविंदर मलिक, दिनेश शर्मा, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो सभागार में मौजूद इस भाई सम्मान के साक्षी बने हैं. हरविंदर ने स्वीकार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया.

नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दिया आपने जिंदगानी। और भानु भाई उसके साथ ही रवि शर्मा को अभी इजाजत दीजिए। हैव अ सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: 5 pence, about a grand.
1: Ron Jewellers, specialising in diamond jewellery, platinum jewellery, 22 karat gold, white gold jewellery, coins and gold bullion bars. Visit Ron Jewellers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.

0: किसी के कितने लोगों को पूछा इसका मीनिंग क्या है, और कुछ लोगों ने बोला कि इट मींस आप आ रहे हो पर्ल हंटिंग के लिए. ओ पर्ल हंटिंग जो होता है इट्स ऑन अ बीच, फिशरमैन की लैंग्वेज में. सो मुथु कुलिथाई दैट इज पर्ल हंटिंग. महमूद साहब एक रोते हुए बच्चे को चुप करना चाहते थे, तो वो बोलते कि मैं लोरी सुनाता हूँ, लेकिन वो ज्यादा रोने लगा. इतना रोता है, क्या होता है सुनते रहिए.
1: फूफा के भतीजे लोरी
2: लोरी लोरी

0: मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करो ले तेरे पाँव फरो, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा थोबड़ा तेरा।
1: Hope you enjoyed this particular song.
2: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
1: And this is one of those beautiful numbers jisme music director the Manorida, unke partner ke saath.

0: शंकर जयकिशन ने आंखों आंखों में 1972 में ये म्यूजिक दिया था, हसरत जयपुरी की लिरिक्स, लेकिन सेम सिंगर्स किशोर कुमार और आशा भोसले, सेम टाइटल आंखों आंखों में वो कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया आनंद बख्शी की लिरिक्स के साथ, वो सुनिए। वाओ व्हाट अ सॉन्ग दैट इज।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Ji haan, same title aankhon aankhon mein, lekin ye film Mahal ka gana Kalyan ji Anand ji ne jo compose kiya, same singers Asha Bhosle, Kishore Kumar, आनंद बख्शी की लिरिक्स आंखों आंखों में।

0: कल्याण जी आनंद जी ने क्या गाना बनाया, एंड दैट्स प्यासे पंछी, विच वॉज पिक्चराइज्ड ऑन महमूद साहब, एंड कमर जलालाबादी हैड रिटन द लिरिक्स ऑफ इट.
1: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइकर रेडियो नेटवर्क.
2: हमें काले

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
2: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
1: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
3: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन
4: Punjab, the biggest tunes.

0: नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या पैरामेडिक है? क्या आप ऑफिस आवर्स में काम करना चाहते हैं जहां हर वीकेंड छुट्टी हो और नाइट शिफ्ट बिल्कुल न करनी पड़े? कैपिटा में हम मिडलैंड्स की विभिन्न लोकेशंस के लिए हाइब्रिड क्लिनिकल असेसर्स की भर्ती कर रहे हैं। एरिया से बाहर रहने वालों के लिए रिमोट वर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। शुरुआती सैलरी है 39,500 पाउंड, साथ में पूरी ट्रेनिंग, लगातार CPD सपोर्ट और कई अन्य बेनिफिट्स। दिलचस्पी है, आज ही सर्च करें कैपिटा हेल्थ असेसमेंट जॉब्स।
1: Birmingham Hodge Hill, this is not a drill. Pepe's is now open at 606 to 608 Bromford Lane. Get your chicken rice, chicken XL, flame grilled wings, strips, burgers, burritos and banging salads, all packed with pepperlicious flavour. Birmingham, come and get it.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed. When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
4: Four beers, please, garçon!
3: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
5: Lester Miller is back.
6: And the stage is about to explode. Confirmed artist.
5: Shin DCS. Expect classic vibes, live energy and a proper celebration.

0: Head. Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.